0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे तिमिर घोष। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट तिमिर घोष। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Concluding the program this evening, we present Shyama Sangeet by our artist Omiyangshu Mukherjee.

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज अमियांशु मुखर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music.

ಏನ್ ದಾ ಏನ್ ದಾ ಏನ್ ದಾ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजय कुमार मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर यशराज वादन. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This morning, we present a Hindustani instrumental recital, followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to a recital on the Yashraj in the Rag Jaunpuri. Our artist is Anujit Roy Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla is Sanjay Kumar Mukhopadhyay. Listen now to the rag Jaunpuri on the Yashraj. Our artist, Anujit Roy Chaudhary.

0: अभी आप राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनुजीत राय चौधरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजय कुमार मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए हम आपको सुनाएंगे राग तोड़ी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बरधान। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर ख्याल। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार।
1: You were listening to a recital on the Esraj in the Rag Jaunpuri. Our artist was Anujit Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the tabla was Sanjay Kumar Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a khayal. Listen to a khayal in the Rag Todi. Our artist is Vramanti Sarkar. Accompanying our artist on the tabla is Ashish Mukhopadhyay and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a khayal in the rag Todi. Our artist Vramanti Sarkar.

0: अभी आप राग तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे भरमंती सरकार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धान। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग टोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज भ्रमंती सरकार। Accompanying our artist on the tabla was Ashish Mukhopadhyay, and on the harmonium was Somnath Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आप सभी का कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मंजुषा पाटिल का गायन। मंजुषा पाटिल अपने गायन का आरंभ कर रही है राग बिहाग से। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है माँ धन धनरी। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है लट उलझी सुलझा जा बालम। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजू परांस पे और तबले पर है मिलिंद पोटे। सुनते हैं राग बिहाग, कलाकार मंजुषा पाटिल।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मंजूषा पाटिल का गाया हुआ राग बिहाग। आपके साथ हारमोनियम पर थे राजू परांजपे, तबले पर थे मिलिंद पोटे। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं मंजूषा पाटिल का गाया हुआ राग बागेश्री। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है सखी मन लागे ना। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है जारे जारे बदरा तुजारे। आपके साथ हारमोनियम पर है राजू परांजपे, तबले पर है मिलिंद पोटे। सुनते हैं राग बागेश्री, कलाकार मंजूषा पाटिल।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मंजुषा पाटिल का गाया हुआ राग बागेश्री। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे राजू परांजपे और तबले पर थे मिलिंद पोटे। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटिया. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कल नाही पावे, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने, और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार, इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल set to vilambit ek taal. The lyrics are kal nahi paave. This will be followed by a chota khayal set to drut teen taal. The lyrics are din gaye beet sukh ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गा राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है नीके घुंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद राग बिलास खानी तोड़ी इन विच ही वेंस द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर नीके घुंघरिया, दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू विलंबित तीन ताल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चैटर्जी, ऑन द हारमोनियम बाय श्री समरजीत रॉय। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत।

कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कला है कीर्ति शीलेदार। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग यमन सुनते हैं। विलंबित झूमरा में निबद्ध रचना के बोल है सलोनारे बाल मोरा और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है कैसे कैसे समझ आऊ मैं। सात संगत हारमोनियम प्रमोद मराठे, तबला विनायक फाटक। आइए सुनते हैं कीर्ति शीलेदार द्वारा प्रस्तुत राग यमन।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कीर्ति शिलेदार द्वारा प्रस्तुत राग यमन। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे प्रमोद मराठे, तबले पर थे विनायक फटक। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कीर्ति शिलेदार द्वारा प्रस्तुत राग शंकरा। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है निडर डर निवारे, और द्रुत तीनता निबद्ध रचना के बोल है ऐसो धीट लंगर गरजत गोरी। सात संगत हारमोनियम जयमाला शिलेदार और तबला विनायक फाटक। तो आइए सुनते हैं राग शंकरा, कलाकार कीर्ति शिलेदार।

अभी आपने सुना कीर्ति शिलेदार द्वारा प्रस्तुत राग शंकरा। सात संगत हारमोनियम माला शिलेदार और तबला विनायक फाटक। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग रागेश्वरी में सितार वादन. आज के कलाकार हैं कल्याण जी दास. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक मुखोपाध्याय. तो आइए सुनते हैं राग रागेश्वरी में सितार वादन, कलाकार कल्याण जी दास.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. Listen to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist is Kalyanjit Das. Accompanying him on the tabla is Ashok Mukherjee. Listen now to the rag Rageshri on the sitar. Our artist, Kalyanjit Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्वरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे कल्याण जी दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अशोक मुखोपाध्याय। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माज खमाज दादरा। आज ही कलाकार हैं संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरिंदम चक्रवर्ती। तो लीजिए प्रस्तुत है ये माज खमाज दादरा, कलाकार संयुक्ता दास।
1: You were listening to a sitar recital in the Rag Rageshri. Our artist was Kalyanjit Das. Accompanying him on the tabla was Ashok Mukherjee. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a Maj Khamaj Dadra. Our artist is Sanjukta Das. Accompanying our artist on the tabla is Arindam Chakraborty. Listen now to Maj Khamaj Dadra. Our artist, Sanjukta Das.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये माज खमाज दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी संयुक्ता दास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Maj Khamaj Dadra. Our artist was Sanjukta Das. Accompanying our artist on the tabla was Arindam Chakraborty. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित सुधीर पांडे इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट तबला वर्चुसो। ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट पंडित अर्जुन पांडे एंड हिज दादा गुरु पंडित भागवत सिंह। इनहेरिटिंग द रिच ट्रेडिशंस ऑफ द बनारस, दिल्ली एंड अजराड़ा घरानास, drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as ladant ka baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation.

Tak,

din latate

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mridangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mridangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein, unhone vikhyat mridangavidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमुड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, Sri T. N. Seshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N. S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne

0: चेन्नई और विजयवाड़ा आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटी पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
1: He is a top grade artist of Akashvani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashvani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
0: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याणारामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
1: Tonight, श्री एन एस कल्याणारामन begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में

0: प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajedari aakar nahi aapasi samman aur vishwas par aadharit ho aur jahan hum har desh ke paas paas nahi साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Rangulam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं M.R. Gautam। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. Gautam। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बागेश्री अंग का चंद्रकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बीत गए दिन रैन तुमरे कारण। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं अथक मन भायो रे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर राग चंद्रकौंस ऑफ द बागेश्री अंग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन। कलाकार थे M.R. गौतम। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सद खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है तबला एकल वादन वादक कलाकार है मुन्ने खां सबसे पहले आप तीन ताल प्रस्तुत करेंगे आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं जय शंकर

अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया तबले पर एक ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं जय शंकर।

ये है रागम 24 घंटे सातु दिन, डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर एक ताल। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चतुर लाल। सबसे पहले आप आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात विलंबित बंदिश जो कि तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं लाल मनाए और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ittal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Teental. The lyrics of this composition are Allah Jane, Allah Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं या कहां गए वो लोग, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहां गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहैया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.